समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

विदर्भ नगरी एक सुशील वेद मित्र नामे द्विज होता, तो वेदशास्त्र संपन्न त्याचा मित्र सारस्वत नामे ब्राह्मण, वेद मित्रास पुत्र सुगुण सुमेधा नामे जाहला, सारस्वत सुत सोमवंत उभयतांचे मित्रत्व अत्यंत, दशग्रंथी ज्ञान बहुत मुखोद्गत पुराणे, संहिता पदक्रम अरण ब्राह्मण छंद निघंट शिक्षा जाण, ज्योतिषकल्प व्याकरण निरुक्त पूर्ण दशग्रंथी, ऐसा विद्याभ्यास करिता षोड

पंचवक्त्रा अज अजिता पयफेन गात्रा जन्मयात्रा चुकविका अनादि सिद्धा अपरिमिता माया चक्रचालका सद्गुण भरिता विश्वव्यापका गुणातीता धाव आता जगद्गुरो ऐसा धावा करिता सुमति तव वनी सिंह व्याघ्र गर्जति परम भयभीत होऊनी चित्ती बाळा सहित क्षिति पड़े श्रावणारितनये नेऊन वनी सांडिले उर्वी गर्

शिवयोगी शिकवि तसे श्रुतिस्मृति पुराणोक्त पाही धर्म नीति वर्तत जाई माता पिता गुरु पाई निष्ठा असो दे

अग्निहोत्र पशु कृषि धन विद्या सर्वत्र घ्यावा समाचार क्षण क्षणा लेकरु भार्या अरिदास सदन गृहवार्ता।

संत भक्ता सी नम्रता अभेद संसार रिपुसी मत्सर प्रसिद्ध असावे निर्मत्सर सर्वाभूति दुर्जनासी दंभ।

विद्या अति मैत्री अति पुण्य अति स्मृति उत्साह धैर्य दान धृति वर्धमान असावी आपुले वित्त आयुष्य गृह छिद्र मैथुन औषध सुकृत मंत्र दानमान अपमान ही सर्वत्र गुप्त असावी जाणिजे नष्ट पाखंडी शठ धूर्त पिशुन तस्कर जार पतित चंचल कपटी नास्तिक अनृत ग्राम्य सभेसी नसावे निंदक शिव भक्ति उच्छेदक मद्यपानी गुरुतल्पक मार्गपाड़क कृतघ्न धर।

व्रत शिवरात्र प्रदोष विधियुक्त आचरावे विशेष शिवहरि कीर्तन निर्दोष सर्वसांडूनी ऐकावे महापर्व कुयोग श्राद्ध दिनी व्यतिपात वैधृति संक्रमणी न प्रवर्तावे मैथुनी ग्रहणी भोजन न करावे सत्पात्री देता दान होय ऐश्वर्य वर्धमान अपात्री दाने दारिद्र्यपूर्ण शास्त्र प्रमाण।

निर्दोष यश जोड़े तया की हा अध्याय हिमाचल भक्ति भवानी कन्या बेल्हाळ तीस वरोनी पयफेन धवल श्वशुर गृही राहिला पुढिले अध्यायी कथा सुरस शिवयोगी दया करील भद्रायुस ब्रह्मानंद निशि दिवस

संस्थापुन रसिक पुराण सांगवीसी ऐसे ऐकता दयाल वदता झाला श्री गोपाल विदर्भ नगरी एक सुशील वेद मित्र नामे द्विज होता तो वेदशास्त्र संपन्न त्याचा मित्र सारस्वत नामे ब्राह्मण वेद मित्रास पुत्र

संहिता पदक्रम अरण ब्राह्मण छंद निघंट शिक्षा जाण ज्योतिषकल्प व्याकरण निरुक्त पूर्ण दश ग्रंथी ऐसा विद्याभ्यास करिता षोडश

सांडुनी ब्रह्मकर्म समस्त माता पिता त्यागिली, धर्मपत्नी टाकुनी दुराचारी तिचाच घरी वास करी, मद्यमांसरत अहोरात्री कामकर्दमी लोळत, करावया जगदुद्धार आपणची अवतरला शंका।

शिवयोगी शिकवि तसे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पाही धर्म नीति वर्तत जाई माता पिता गुरु पाई निष्ठा असो देस

वेद अग्निहोत्र पशु कृषि धन विद्या सर्वत्र घ्यावा समाचार क्षण क्षणा लेकरु भार्या अरिदास सदन गृह वार्ता।

करावे शास्त्र श्रवण शिव पूजन यथाविधि स्नान होम जपाध्ययन पंचयज्ञ गोवि प्रसेवन श्रवण मनन निज ध्यास पूर्ण अनालस्ये करावि सुरत निद्रा भोजन येथे असावे प्रमाण दान सत्कर्म अभ्यास

या अति मैत्री अति पुण्य अति स्मृति उत्साह धैर्य दान धृति वर्धमान असावी आपुले वित्त आयुष्य गृह छिद्र मैथुन औषध सुकृत।

पिशुन तस्कर जारपतित चंचल कपटी नास्तिक अनृत ग्राम्य सभेसी नसावे निंदक शिव भक्ति उच्छेदक मद्यपानी गुरुतल्पक मार्गपाड़क कृतघ्न धर्म।

पयफेन धवल श्वशुरगृही राहिला पुढिले अध्यायी कथासुरस शिवयोगी दया करील भद्रायुस ब्रह्मानंद निशिदिवस श्रवण करोत विद्वज्जन भवगज विदारक मृगेन्द्र श्रीधर वरद आनंद।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

विदर्भ नगरी एक सुशील वेद मित्र नामे द्विज होता, तो वेदशास्त्र संपन्न, त्याचा मित्र सारस्वत नामे ब्राह्मण, वेद मित्रास पुत्र सुगुण, सुमेधा नामे जाहला, सारस्वत सुत सोमवंत, उभयतांचे मित्रत्व अत्यंत, दशग्रंथी ज्ञान बहुत मुखोद्गत पुराणे, संहिता पदक्रम अरण ब्राह्मण, छंद निघंट शिक्षा जाण, ज्योतिषकल्प व्याकरण, निरुक्त पूर्ण दशग्रंथी, ऐसा विद्याभ्यास करिता।

सुता पंचवक्त्रा अज अजिता पयफेन गात्रा जन्मयात्रा चुकविका अनादि सिद्धा अपरिमिता माया चक्रचालका सद्गुण भरिता विश्वव्यापका गुणातीता धाव आता जगद्गुरो ऐसा धावा करिता सुमति तव वनी सिंह व्याघ्र गर्जति परम भयभीत होऊनी चित्ती बाळा सहित क्षिति पडे श्रावणारी तनये नेऊन वनी सांडिले उर्वी गर्भरत्न कीबी रसेन स्नुषा घोर कानन पति वियोगे सेवी जैसे सुमतीची करुणा ऐकून

शिवयोगी शिकवि तसे श्रुति स्मृति पुराणोक्त पाही धर्म नीति वर्तत जाई माता पिता गुरु पाई निष्ठा असो दे।

अग्निहोत्र पशु कृषि धन विद्या सर्वत्र घ्यावा समाचार क्षण क्षणा लेकरु भार्या अरिदास सदन गृहवार्ता।

करावे शास्त्र श्रवण शिव पूजन यथाविधि स्नान होम जपाध्ययन पंचयज्ञ गोवि प्रसेवन श्रवण मनन निज ध्यास पूर्ण अनालस्ये करावी सुरत निद्रा भोजन येथे असावे प्रमाण दान सत्कर्म अभ्यास

या अति मैत्री अति पुण्य अति स्मृति उत्साह धैर्य दान धृति वर्धमान असावी आपुले वित्त आयुष्य गृह छिद्र मैथुन औषध सुकृत मंत्र दानमान अपमान ही सर्वत्र गुप्त असावी जाणिजे नष्ट पाखंडी शठ धूर्त पिशुन तस्कर जारपतित चंचल कपटी नास्तिक अनृत ग्राम्य सभेसी नसावे निंदक शिवभक्ति उच्छेदक मद्यपानी गुरुतल्पक मार्गपाड़क कृतघ्न धर्म।

शिवहरि कीर्तन निर्दोष सर्वसांडूनी ऐकावे महापर्व कुयोग श्राद्ध दिनी व्यतिपात वैधृति संक्रमणी न प्रवर्तावे मैथुनी ग्रहणी भोजन न करावे सत्पात्री देता दान होय ऐश्वर्य वर्धमान अपात्री दाने दारिद्र्यपूर्ण शास्त्र प्रमाण जाणिजे वेद शास्त्र पुराण कीर्तन गुरु ब्राह्मण मुखे करावे श्रवण दान दिधल्याचे पालन करिता पुण्य।

पयफेन धवल श्वशुरगृही राहिला पुढिले अध्यायी कथासुरस शिवयोगी दया करील भद्रायुस ब्रह्मानंद निशिदिवस

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।